0: व्यवस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM।
2: मेलबर्न म्यूजियम की नई भव्य प्रदर्शनी रोम एम्पायर पावर पीपल अब खुल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं देखे गए 180 अद्भुत ऐतिहासिक अवशेषों के साथ जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता, ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन। मूर्ति और मोजेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जानें। बुक करें रोम एम्पायर फॉर पीपल museumsvictoria.com.au।
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. If you need urgent healthcare now, but it's not life-threatening, get free support with Virtual Emergency Department. Speak to highly skilled emergency doctors and nurses by video call using your mobile or computer. It's free to use, available 24/7, and there's no appointment, GP referral or Medicare card required. For an emergency video consultation, search Virtual Emergency Department or visit ved.vic.gov.au. Authorised by the Victorian Government. One Treasury Place, Melbourne.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: पुलिस बूस बस के लिए बाएं मुड़े। सांस की जांच उपकरणों वाली पुलिस मोटरसाइकिलों के लिए दाएं मुड़े। जीवन के लिए खतरनाक दुर्घटना की स्थिति में सीधे आगे जाना जारी रखें।
5: आपकी छुट्टी कैसे खत्म होती है यह आप पर निर्भर है। यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो यह गलत बात है। TAC की ओर से एक संदेश।
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM।
2: पेश है साइंस वर्क्स में नई और जीवंत प्रदर्शनी कलर सी द वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट। यहां देखें चमकते खनिज, ट्रिकल भ्रम और बच्चों के लिए रोमांचक हाथों से किए जाने वाले व्यवहारिक प्रयोग, साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद। रंगों को देखें, रोशनी के साथ खेलें और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है। टिकट बुक करें museumsvictoria.com.au।
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: Are you disaster ready? Australia Post is partnering with Australian Red Cross to help households prepare for the unexpected. Taking a few simple steps today can make a big difference tomorrow. Get started at redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: सही सेवाएं उपलब्ध हैं, सही जानकारी भी उपलब्ध है, लेकिन हमारा समुदाय हमेशा उन्हें ढूंढ नहीं पाता। डाइवर्सिबिलिटीज इसे बदल रहा है। एक निशुल्क बहुसांस्कृतिक प्लेटफॉर्म जहां आप अपनी भाषा में सेवाएं, जानकारी, कार्यक्रम और समुदाय से जुड़ने के अवसर पा सकते हैं। इस महीने निशुल्क जुड़े और $50 का वेस्टफील्ड वाउचर जीतने का मौका पाए। डाइवर्सिबिलिटीज हम सभी के लिए 1300-013-727 पर कॉल करें या अधिक जानकारी के लिए 3ZZZ.com.au पर जाएं।
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM।
8: मैंने नहीं सोचा था कि यह नौकरी मेरे लिए होगी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से जो कौशल हैं, वे बिल्कुल वही हैं जो मुझे एक अच्छी जेल अधिकारी बनने के लिए चाहिए थे। अपने बातचीत के कौशल का उपयोग करना और एक अच्छी रोल मॉडल बनना और इस सब का अनुभव मुझे मेरे सहयोगी साथियों के साथ होता है। यदि आप भी अपने कौशल का उपयोग करके एक ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जो फायदेमंद और सुरक्षित हो, तो अभी आवेदन करें। सर्च करें करेक्शंस विक्टोरिया करियर्स, विक्टोरियन सरकार, वन ट्रेजरी प्लेस, मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. If you need urgent healthcare now, but it's not life-threatening, get free support with Virtual Emergency Department. Speak to highly skilled emergency doctors and nurses by video call using your mobile or computer. It's free to use, available 24/7, and there's no appointment, GP referral or Medicare card required. For an emergency video consultation, search Virtual Emergency Department or visit ved.vic.gov.au. Authorised by the Victorian Government. One Treasury Place, Melbourne.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
9: अगला कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होगा। 1992 से चला आ रहा 2025 में ऑस्ट्रेलियन नेशनल बेस्ट एथनिक प्रोग्राम से सम्मानित, भारतीय और ऑस्ट्रेलियन संस्कृतियों को जोड़ता, मेलबर्न वासी भारतीय प्रवासियों द्वारा रचित, दिलों दिमागों और मुद्दों को जोड़ता, आपके साथ गाता गुनगुनाता, हर सप्ताह आता आपका हिंदी का गीतांजलि कार्यक्रम एक बार फिर आ गया है। अधिक जानकारी के लिए www.3zzindian.org। आइए मिलते हैं आज के कार्यक्रम से।
10: नमस्कार मेलबर्न, आज के गीतांजलि कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। हम यानी मैं शारदा
11: और मैं दीप्तिमान, और मित्रों आज की तारीख है 3 अक्टूबर 2026, और अगर संवत के परिप्रेक्ष्य में बोलें तो शक संवत है 1948 और विक्रम संवत 2083। तो मित्रों मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत ही विशेष होता है।
10: बिल्कुल
11: हाँ, क्योंकि सबसे अधिक
10: 2 अक्टूबर कल ही बीता है, और 2 अक्टूबर को हमारे भारतवर्ष में बहुत ही मतलब दो महान व्यक्तियों का जो है
11: जन्मदिन था।
10: तो
11: एक तो थे मोहनदास करमचंद गांधी
10: और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री जी।
11: तो मित्रों ये तो दो महान हस्तियां भारत की ना, अगर हम पॉलिटिक्स या भारत के हिस्ट्री की बात करें। और इसके अलावा संगीत के क्षेत्र में भी 1 अक्टूबर को दो महान हस्तियों का जन्मदिन होता है। पहले का नाम है SD बर्मन जी, और शायद दूसरे का नाम तो आपको बताना पड़ेगा, मजरूह सुल्तानपुरी। जी मित्रों, तो आज के कार्यक्रम में शारदा गीतांजलि में हम लोग क्यों ना अपने श्रोताओं से ये जो जानकारी ये साझा करें,
10: बिल्कुल,
11: इन महान हस्तियों के बारे में। और गीतांजलि कार्यक्रम गीतों की अंजलि है, तो उसमें गीत तो होंगे, है ना।
10: बिल्कुल, और तो, जो हम लोग गाने सुनाएंगे वो SD बर्मन और मजरूह सुल्तानपुर जी के लिखे हुए और उनके संगीत, SD बर्मन के संगीत वाले गाने सुनाएंगे हम आज आपको,
11: बहुत ही सुंदर। तो मित्रों ये है आज का अक्टूबर का हम लोग का पहले सप्ताह का कार्यक्रम गीतांजलि रेडियो 3ZZZ 92.3 FM पर। आपको मालूम ही है हम लेकर आते हैं ये प्रोग्राम। और मित्रों प्रोग्राम के प्रारंभ में एक और आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, वो ये कि कृपया आप इस कार्यक्रम को थोड़ा सहयोग करें, क्योंकि रेडियो का जो मीडियम है, रेडियो का माध्यम, ये थोड़ा सा अब सपोर्ट चाहता है। अभी इतने सारे मीडियम आ गए हैं, जैसे ब्लॉगिंग हो गई है और बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं,
10: यूट्यूब और इंस्टा और पता नहीं क्या
11: क्या क्या तो इन सब के बीच में जो एक स्थिर मीडियम है जो कि रहा,
10: मतलब
11: है,
10: हम अपने जो नए आ रहे हैं आजकल के उनको हम तवज्जो दें, बट हमारे जो पुराने मीडियम है ना उसको हम ना भूलें और उसको भी थोड़ा सा अगर सहयोग दें तो ज्यादा अच्छा होगा।
11: तो मतलब शारदा ये बोल रही है कि जो अपने चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनको तो सपोर्ट करें ही, और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी सहारा दें। तो मित्रों रेडियो, हम नहीं बोलेंगे ग्रैंड पेरेंट है, लेकिन रेडियो बहुत, रेडियो की जो वेव्स है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच जाती है ना। और जो हमारा कार्यक्रम है ये गीतांजलि का, ये लगभग 30-35 साल से हम लोग कर रहे हैं, हिंदी जो इंडियन प्रोग्राम है ये हमारा, और आप में से बहुत सारे लोग इससे जुड़े और आप लोगों ने हमारी जो मेंबरशिप ली,
10: सहयोग दिया, तो अभी उसको कायम रखें और जो नए लोग हैं वो भी आए प्लीज, और हमारा जो रेडियो वाला माध्यम है उसको जीवित रखें और अपना सहयोग दें, सुने और थोड़ा योगदान दें।
11: बिल्कुल मित्रों, तो ये थोड़ी सी भूमिका थी आज के कार्यक्रम के बारे में, और आपसे जो स्पेशल रिक्वेस्ट है, आपकी मेंबरशिप, सदस्यता और आपका सपोर्ट, जिसके बिना ये कार्यक्रम चल ही नहीं सकता। तो ठीक है मित्रों, चलिए हम लोग इस मौके को सेलिब्रेट करते हैं और सुनाते हैं आपको एक गाना।
10: बिल्कुल।

0: श्रोताओं, ये गाना लिया गया था फिल्म काला बाजार से और इसको गाया था मोहम्मद रफ़ी जी ने और इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे एस डी वर्मन जी और इसके बोल लिखे थे शैलेंद्र जी ने और फिल्माया गया था देवानंद और वहीदा रहमान जी पे।
1: जी मित्रों, और ये फिल्म थी काला बाजार, सन 1960 की फिल्म थी। श्रद्धा, हम लोग आज जिन सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एस डी वर्मन जी, मजरूर सुल्तानपुरी जी और हमारे देश के दो महान नायक शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी, ना, इन लोगों के बारे में। तो मित्रों, एस डी बर्मन जी के बारे में कुछ बात की जाए।
0: बिल्कुल।
1: एस डी बर्मन जी जो है ये श्रद्धा त्रिपुरा, जो आज का त्रिपुरा एक पहले काफ़ी बड़ा राज्य था और बांग्लादेश और पाकिस्तान इनके बनने के बहुत पहले ये एक साम्राज्य हुआ करता था, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था त्रिपुरा के। तो त्रिपुरा और मणिपुर इनकी जो सभ्यताएँ हैं ना, इनका इन पर काफ़ी, जो इनका जो साम्राज्य था जहाँ से आते थे बर्मन साम्राज्य, तो वहाँ के प्रिंसली स्टेट से एस डी बर्मन जी आते हैं। और अगर आज के ज़माने में देखें तो इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था जो कि पहले त्रिपुरा का पार्ट था। तो ये इनके बारे में एक छोटी सी कहानी है। और ये तो आते थे एक बहुत ही संभ्रांत घराने से, राज मतलब राजाओं के राशि घराने से, लेकिन इनको संगीत का शौक आ गया और फिर इन्होंने बहुत लोगों से शिक्षा ली और इनका संगीत तो हम लोगों ने सुना ही अभी, है ना। तो श्रद्धा, ये तो एक गाना सुना है इनके बारे में हम लोगों ने, एस डी वर्मन जी के बारे में।
0: दूसरा गाना सुनाते हैं,
1: एक और गाना सुनाते हैं मैं, तो एक और मूड में एस डी वर्मन जी का सुनते हैं। दिल का

0: ये गाना लिया गया था फिल्म तेरे घर के सामने से, और इसको गाया था मोहम्मद रफ़ी जी ने, और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो SD वर्मन ऑफकोर्स, और वो लिखे थे हसरत जयपुरी जी ने, और फिल्माया गया था देवानंद और नूतन जी पे।
1: ओ, मेरे ख्याल से SD वर्मन जी की जो बहुत सी फिल्में हैं उनमें देवानंद जी मैक्सिमम फिल्मों में देवानंद जी हैं, या और भी कोई आती है, या राजेश खन्ना है ना, जैसे आराधना थी उनकी, और ऐसी बहुत सारी क्लासिक फिल्में थी इनकी। तो मित्रों, हम लोग सचिन देव बर्मन जी के बारे में बात कर रहे हैं पहले आज के कार्यक्रम में। इनका एक उपनाम था शारदा, इनको लोग बोलते थे करता
0: करता,
1: इनका निक नेम था। तो खैर, जो करता धरता वो तो भगवान ही है सभी के, लेकिन इनका उपनाम बॉलीवुड के जगत में करता था। और इनके जो बेटे थे उनको तो आप जानते ही हो, उनका नाम क्या था?
0: राहुल देव बर्मन।
1: उनका संगीत भी RD बर्मन। तो इन्होंने भी SD बर्मन जी से सीखा संगीत, लेकिन उन्होंने अपनी बिल्कुल अलग छवि बनाई थी SD बर्मन जी ने। और SD बर्मन और आशा भोसले जी के जो गाने होते थे वो तो खैर अपने आप में बहुत ही यूनिक होते थे। तो मित्रों देखिए, हम लोग कहाँ से कहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, दो तीन जनरेशन की, SD बर्मन से RD बर्मन और आशा भोसले। तो यही हमारा कार्यक्रम है गीतांजलि, जो कि रेडियो 3ZZZ 92.3 FM पर आता है हर शनिवार की शाम रात 9 से 10 के बीच। और आज का कार्यक्रम पेश कर रहे हैं हम लोग, यानी मैं दीप्तिमान
0: और मैं शारदा।

0: ये गाना फिल्म गाइड से लिया गया था और इसको गाया था मोहम्मद रफ़ी जी ने, और इसके जो बोल लिखे थे वो शैलेंद्र जी के थे, और म्यूजिक डायरेक्शन तो यस वर्मन जी का ही था, और फिल्माया गया था वहीदा रहमान और देवानंद जी पे,
1: और इसके डायरेक्टर थे विजय आनंद। तो एक और
0: फिल्म के, हाँ, फिल्म के
1: डायरेक्टर। तो एक और पैटर्न उभर के आ रहा है मित्रों की, जितनी फिल्में हैं देवानंद जी की उनमें अधिकांश फिल्मों के डायरेक्टर विजय आनंद हुआ करते थे। तो इनकी जो जोड़ी है, इनकी जो मतलब टीम है,
0: पहले के जमाने में ना वो जोड़ियां बन जाती थी, फिर वही मतलब
1: आगे बढ़ती रहती थी। और इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाती थी। मित्रों, हम लोगों ने अभी नाम लिया शारदा ने लिरिसिस्ट शैलेंद्र जी का, तो आपको तो मालूम होगा कि शैलेंद्र जी ने शंकर जयकिशन जी के साथ में भी बहुत अच्छा काम किया था, और राज कपूर जी की जो बहुत सारी फिल्में हैं उनमें शैलेंद्र जी ने ही लिरिक्स कंपोज किए थे। तो ये बहुत ही प्यारी सी दुनिया है बॉलीवुड की, संगीत की, जहाँ पे कलाकार आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और एक दूसरे से सीखते भी हैं। एक बार क्या हुआ शारदा, मुझे कहानी याद आ रही है एस डी बर्मन और रोशन जी की। रोशन जी ने एक नया गाना कंपोज किया था, वो शायद था दिल जो न कह सका। तो जब उन्होंने कंपोज किया, या मैं मुझे याद आ रहा है कि शायद यही गाना था, और उस समय एस डी बर्मन और रोशन ये लोग समकालीन लोग थे, तो रोशन जी के उस कंपोजिशन को सुनकर एस डी बर्मन जी ने उनको फ़ोन किया तुरंत और बोला कि रोशन तुमने तो मेरी नींद ही गायब कर दी, तुमने इतना अच्छा म्यूज़िक कंपोज किया है, अब मुझको कुछ और करना पड़ेगा, मैं इतना मोटिवेट हो गया हूँ कि मुझे अब तुमसे भी अच्छा कोई संगीत कंपोज करना पड़ेगा। तो उस समय की जो दुनिया थी मित्रों, ये बहुत ही हेल्दी कंपटीशन की दुनिया थी, जहाँ पे संगीतकार आपस में सीखते थे, सुनते थे और दूसरे के संगीत को अप्रिशिएट भी करते थे
0: और तो, उसे प्रेरणा लेते थे, ना कि जलसी की भावना या
1: बिल्कुल। देखिए, उन्होंने तुरंत को फ़ोन किया और बोला कि हे तुमने मेरी आँखों की मतलब रात की नींद उड़ा दी, कितनी अच्छी बात थी मित्रों। तो हम इन छोटी छोटी जो घटनाएँ हमारी हैं बॉलीवुड की पहले के जनरेशन की, वो उनका जिक्र हम करते हैं अपने प्रोग्राम में, इसलिए कि आपको उसकी झलकियाँ मिलती रहें, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने की हैं कि दोस्ती को कैसे कायम रखा जाए, और दोस्ती में कंपटीशन का अपना स्थान है, लेकिन जो अंडरलाइंग फीलिंग ऑफ कैमराडरी है, फ्रेंडशिप है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है।
0: बिल्कुल।

0: ये गाना फिल्म प्रेम पुजारी से लिया गया था और इसको गाया था किशोर कुमार जी ने और इसके बोल लिखे थे नीरज जी ने और फिल्माया गया था देवानंद जी पे।
1: अच्छा, नीरज यानी गोपाल दास नीरज जी। हाँ, तो मित्रों आपको मालूम है कि नीरज जी जो है बहुत ही अच्छे हिंदी के कवि थे ना।
0: कवि थे,
1: जबकि मजरू सुल्तानपुरी और लोग जो है वो लोग शायर होते थे, लेकिन नीरज जो है वो हिंदी के, शुद्ध हिंदी भाषा के कवि थे और उन्होंने इतनी अच्छी कविता लिखी थी, फूलों के रंग से दिल की कलम से
0: उसको लिखी रोज पाती।
1: वाह मित्रों, एक चीज और है एस डी बर्मन जी के बारे में कि ये एक ऐसे संगीत निर्देशक थे कि इन्होंने अपनी फिल्मों में किशोर कुमार और रफ़ी दोनों लोगों को मतलब ऑलमोस्ट बराबर बराबर का मौका दिया था और दोनों की प्रतिभाओं को इन्होंने मतलब हम लोग के सामने लाए थे। तो ऐसे बहुत कम संगीतकार हैं जो अलग अलग सिंगर्स के साथ में काम करते हों, लेकिन ये भी इनके देखिए एक पर्सनालिटी के स्पेक्ट्रम का एक नमूना है कि इतने बड़े होते थे ये लोग म्यूज़िक कंपोजर्स कि इनके सामने जो सिंगर्स थे वो लोग उनके परिवार के ही एक सदस्य जैसे होते थे। और अगेन किशोर कुमार और रफ़ी जी में तो कंपटीशन था ही पहले, लेकिन उन सबको साथ लाने का काम एस टी बर्मन जी ने किया।

0: गाना लिया गया था फिल्म ज्वेल थीप से, और इसको गाया था लता जी ने और भूपिंदर सिंह जी ने, और इसका म्यूजिक डायरेक्टर डायरेक्शन दिया था एस डी वर्मन जी ने, और बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी जी ने, और फिल्माया गया था वैजयंती माला और देवानंद जी पे।
1: वाह, तो मित्रों देखिए ये गाना एक आखिर आ ही गया जिसमें मजरू सुल्तानपुरी और एस डी वर्मन इन दोनों लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और आज का कार्यक्रम जो हमारी इसकी थीम भी कुछ ऐसी है कि एस डी वर्मन जी और मजरू सुल्तानपुरी दोनों का ही जन्मदिन 1 अक्टूबर को पड़ता है। तो मजरू सुल्तानपुरी जी के बारे में बात की जाए शारदा, इनका मालूम इनका असली नाम क्या था?
0: इनका असली नाम था असरार उल हसन।
1: असरार उल हसन, और इनका दिल बचपन में और जवानी
0: में, बचपन में नहीं कहते हैं लोग, बचपन में नहीं जवानी में कई बार टूटा,
1: कई बार टूटा इनका दिल। और भाई शायद लोग तो होते ही ऐसे ना, मतलब काफी अपनी ख्यालों में डूबे हुए और
0: पता इमोशनल होते हैं ना जल्दी, किसी दिल पे दिल दे बैठते हैं या
1: बिल्कुल
0: जो भी है,
1: और जल्दी दिल पे चोट भी खा बैठते हैं, है ना। तो इनका दिल होता है शीशे का। और मित्रों फिर ऐसा हुआ इनकी, ऐसा कहते हैं लोग कि इनके कई बार इनके प्यार के किस्से आगे बढ़े लेकिन बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, दिल टूटता गया, तो ये उससे दुखी होकर इन्होंने अपना नाम बदल दिया और नाम रख दिया मजरू,
0: जिसका मतलब होता है
1: Wounded soul, मतलब घायल आत्मा। मजरूह, रूह ना, रूह मतलब आत्मा और मज मतलब घायल। तो मजरूह इनका नाम पड़ गया और ये नाम ऐसा पड़ा कि बिल्कुल छा गया भारत के बॉलीवुड के जगत में,
0: और सुल्तानपुर के थे तो इसलिए सुल्तानपुरी उनका
1: सुल्तानपुर पड़ सुल्तानपुरी पड़ गया। तो मित्रों ये गाना था जैसा कि शारदा ने बताया कि ये फिल्म ज्वेल थीप से ली गई थी, 1967 की फिल्म थी, सुंदर फिल्म, सुंदर गाने। और मित्रों ये कार्यक्रम रेडियो 3ZZZ पर गीतांजलि आगे बढ़ रहा है आपके सहयोग से, और आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपको गाने पसंद आ रहे हैं, और आप में से कुछ लोग फरमाइश भी कर रहे हैं, तो उनकी फरमाइशों को भी हम पूरा करेंगे अपने कार्यक्रम में। सुनते हैं एक और गाना।

0: श्रोताओं, ये गाना लिया गया था फिल्म कारवां से, और इसको गाया था मोहम्मद रफ़ी जी ने और लता मंगेशकर जी ने, और इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे आर डी वर्मन जी, और बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी जी ने, और फिल्माया गया था जितेंद्र और अरुणा ईरानी पे।
1: ओह वाह, तो मित्रों देखिए हम बात कर रहे हैं मजरू सुल्तानपुरी जी का क्या और उनके ये लिखे हुए गानों, और इनके जो एक मेंटर या उनके गुरु थे उनका नाम था जिगर मुरादाबादी। तो इस उन्होंने अपनी जो प्रेरणा है और काफ़ी चीज़ें सीखी उन्होंने जिगर मुरादाबादी जी से, और ये बहुत ही एक तरह से अपने आप में खोए रहने वाले थे, अपने आप अपनी जगत में रहते थे। और जब कहते हैं कि जब ये बम्बई गए तो वहाँ पे एक बार ये इनकी वाइफ या ये खुद बीमार पड़े, काफ़ी बीमार पड़े, और इनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। अस्पताल में गए ये तो वहाँ पे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और इनके पास पैसे बिल्कुल थे नहीं और अस्पताल में फीस काफ़ी थी। तो कहते हैं कि राज कपूर जी वहाँ पे आए और राज कपूर जी ने उनको एक गाना लिखने को बोला कि आप एक सिचुएशन है उन्होंने दी, और वो सिचुएशन किसी फिल्म की नहीं थी, उन्होंने ऐसी राज कपूर जी ने फिक्टिशियस सिचुएशन का ऐसी बोला कि ये सिचुएशन है मजरू तुमको इस पे गाना लिखना है। तो मजरू जी ने गाना उस पे लिखा, उसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे, और उसकी फीस उन्होंने 1,000 रुपये उस समय राज कपूर जी ने दी कि ये गाना तुमने इतना अच्छा लिखा है मजरू, क्योंकि ये बहुत ही मतलब खुददार आदमी थे और ये वामपंथी विचारधारा से काफ़ी प्रेरित थे, किसानों के लिए मजदूरों के लिए इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और कई बार ये जेल भी गए उन कविताओं के कारण। तो ये मजरू जो है इनकी जो सोच है बिल्कुल क्रांतिकारी थी, लेकिन किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाना है। तो और देखिए अगेन ये मतलब एक फ्रेंडशिप और कितनी बड़ी चीज़ है बॉलीवुड में कि जब भी किसी पे कोई भी संकट आता था तो जो लोग सक्षम थे जैसे कपूर परिवार था तो राज कपूर जी उनके पास आए और इनको मतलब बिना शर्मिंदा किए हुए उन्होंने इनको गाना लिखने को बोला, इन्होंने गाना लिखा और फिर उसका जो मेहनताना था 1,000 रुपये उन्होंने इनको दिया। तो मित्रों ये कहानियाँ छोटी छोटी हैं, यही जीवन को शेप करती हैं हमारी, हम जीवन में कुछ भी कर लें लेकिन जो भी हमारे पल हैं भावनाओं से जुड़े हुए उनको ही हम याद रखते हैं और वही हमारे जीवन को बनाते हैं। तो ये छोटी सी कहानी हम लोग सुना रहे हैं आपको मजरू जी की, उनकी कविता की, उनकी शायरी की, और उसको संगीत में ढालने वाले जो हमारे महान संगीत निर्देशक हैं उनके बारे में। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं एक और गाना।

0: लिया गया था फिल्म तीसरी मंजिल से, और इसको गाया था मोहम्मद रफ़ी जी ने और आशा भोसले जी ने, और इसके बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी जी ने, और म्यूजिक डायरेक्शन था आर डी वर्मन जी का, और फिल्म आया गया था सम्मी कपूर और हेलन जी पे।
1: वाह मित्रों, इनके बारे में एक चीज़ और बता दें आपको मजरू जी के बारे में, कि ये पहले कवि तो थे, शायर थे, लेकिन इनका प्रोफेशन मालूम है क्या था? पहले ये हकीम थे, यूनानी जो होती है दवा, यूनानी मेडिसिन, उसमें ये एक हकीम होते थे, यूनानी प्रैक्टिशनर, तो उसका काम करते थे, और लेकिन इनको शौक था शायरी का, तो मुशायरे में जाते थे। तो ऐसे ही जिगर मुरादाबादी जी ने इनका देखा शायर, इनका शेर, इनको बुलाया, और फिर इनको और शौक इनका बढ़ता गया, और सोचिए कहाँ मतलब यूनानी दवा और कहाँ ये दिल की दवा लिखने लगे। तो ऐसे हमारे मजरू सुल्तानपुरी इतने प्यारे संगीतकार हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं हम। इनके बारे में शारदा, इनका जो रेंज है वो केएल सहगल से लेके शाहरुख खान तक है, इतना बड़ा रेंज है। इन्होंने केएल सहगल जी के गाने लिखे हैं। कहते हैं कि जब इन्होंने ये लिखा था, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, ये इन्होंने लिखा था। और मजरू सुल्तानपुरी के जो गाने हैं आप देखोगे, उसमें जो सनम और दिल और इस तरह की चीज़ें, ये वर्ड ले आए जो उर्दू और पर्शियन में होते थे पहले वर्ड्स, वो ये जो हिंदी गाने हैं उसमें लाने में इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। कि बहुत सारे आप देखो और भी शब्द आपको हम सुनाएंगे इसमें गानों में, ध्यान दीजिएगा कि जो लवर्स और उनके लिए जो शब्द यूज़ करते हैं, ये वो पहली बार मजरू सुल्तानपुरी ने ही शुरू किया था। तो उनका जो गाना था ये क्या, जब दिल ही टूट गया, इसके बारे में कहते हैं कि केएल सहगल ने ये कहा था कि जब केएल सहगल की डेथ होगी तो उनके फ्यूनरल पे ये गाना प्ले किया जाए। ये गाना उनको इतना प्रिय था मित्रों, तो इतना सोलफुल म्यूज़िक एक तरफ, और उसके अलावा जो शोकी भरा गाना दूसरी तरफ, इतना बड़ा रेंज मजरू सुल्तानपुरी जी ने कवर किया था, और आज हम उनकी बात कर रहे हैं और उनके म्यूज़िक को सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ मित्रों। हम आशा कर रहे हैं कि आपको प्रोग्राम को पसंद आ रहा होगा।

0: तो ये गाना लिया गया था फिल्म तीन देवियां से, और इसको गाया था किशोर कुमार और लता जी ने, और इसका म्यूजिक डायरेक्शन जो था वो एस डी वर्मन जी का, और इसको लिखा था मजरू सुल्तानपुरी जी ने, और फिल्माया गया था देवानंद और नंदा पे शायद,
1: और कल्पना और सिमी ग्रेवाल
0: ये तो एक्टर्स थे, लेकिन फिल्माया गया था इन दोनों
1: इस गाने को। अच्छा वाह, तो इसकी वर्डिंग्स क्या थी?
0: लिखा है तेरी आंखों में
1: दिल का अफसाना। हाँ। अफसाना, तो इस तरह के वर्ड देखिए आप, जो उर्दू के वर्ड्स हैं ये मजरू जी की देन थी हिंदी संगीत को, कि वो पर्शियन वर्ड्स को भी लेके आए और उनको उन्होंने इतने प्यार से गाने में पिरोया कि सुनने वालों को आता था आनंद। मित्रों, आपको हम फिर याद दिला दें कि अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को हम लोगों ने मनाया भारत में लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस। तो चलिए हम बात करते हैं शास्त्री जी के बारे में। शारदा, इनका उपनाम शास्त्री था ना, इन्होंने अपना नाम चेंज किया था, और ये इतने सिंपल और इतने मेहनती और इतने ईमानदार प्रधानमंत्री थे कि इनके जैसा पर्सन आज के जमाने में तो नहीं मिलेगा। मैं
0: बिल्कुल सीधे ना, बिल्कुल सिंपल आदमी थे, और इनका नारा था ना जय जवान जय किसान।
1: बिल्कुल, इन्होंने मित्रों इनकी जो देने हैं कंट्रीब्यूशंस भारतीय पॉलिटिक्स में और भारत के जो मतलब भारत राष्ट्र का विकास है उसमें इनकी जो देन है वो मतलब अनबिलीवेबल है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्या होता है कि जो और हमारे, खैर हम आई डोंट वांट टू बिकम कंट्रोवर्शियल बाय कंपेयरिंग डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स, लेकिन
0: सभी के अपने अपने वो होते हैं ना, जॉनर या जो भी कह लेना।
1: बिल्कुल, लेकिन देखिए अगर आप इनको कंपेयर करें नेहरू जी से फॉर एग्जाम्पल, तो नेहरू जी वॉज ग्लैमरस और बहुत ही करिश्मेटिक थे, वहाँ पे इसके अपोजिट शास्त्री जी बिल्कुल सिंपल।
0: नेहरू जी विदेशों में
1: पढ़े लिखे थे
0: और ये इलाहाबाद,
1: ये मुगलसराय
0: गांव के थे, तो दोनों में डिफरेंस होगा ही ना।
1: बिल्कुल, तो हम ये बात कर रहे हैं कि जहाँ पे हम बहुत ही जो रोमांटिक और ग्लैमरस चीज़ें वो याद रखते हैं, लेकिन जो सिंपल चीज़ें हैं लाइफ की, शास्त्री जी के बारे में फॉर एग्जांपल बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मित्रों हमें लगता है कि बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, तो हम उसका जिक्र करना चाहेंगे लाइफ की शास्त्री जी के बारे में। फॉर एग्जांपल बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मित्रों हमें लगता है कि बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, तो हम उसका जिक्र करना चाहेंगे। फॉर

0: मिनिस्ट्री में थे तो उसमें इन्होंने लाठीचार्ज देखते थे तो बहुत दुखी हो जाते थे कि लाठीचार्ज तो मतलब बहुत ही अमानवीय चीज़ है, पुलिस के पास लाठी होनी चाहिए लेकिन उसका खाली डर होना चाहिए, पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने वाटर कैनन्स इंट्रोड्यूस करवाया भारत में, वाटर कैनन है ना, पानी के जो गोले होते हैं, और उन्होंने बोला कि लाठीचार्ज कोई नहीं करेगा,
1: मतलब उससे ज़्यादा चोट लगती है, वाटर कैनन से कम चोट लगती है।
0: लेकिन की सोच देखिए, हम इसकी बात कर रहे हैं, सोच की देखिए इन्होंने मतलब इतने मतलब जो मानवीय जो इनका पक्ष है शास्त्री जी का, ये मतलब बहुत ही अनोखा है। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि ये मुगल सराय में जन्मे छोटी सी जगह पे, और इनका स्कूल और कॉलेज था दूसरी तरफ, तो ये रोज
1: गंगा को पार करते थे
0: और कैसे अपनी किताबों का बनाते थे गट्ठर, उसको सिर पे बांधते थे और फिर नदी क्रॉस करते थे और पढ़ के आते थे। तो ये देखिए कि यहाँ पे सात समुद्र पार, जहाँ हमारे नेहरू जी शिक्षा के लिए गए, एंड ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ जो बोलते हैं लोग टिपिकली, वहाँ शास्त्री जी वॉज बॉर्न विद नथिंग बट डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी। और इनके बारे में एक कहानी ये भी है कि जब ये प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने जो ऑफिशियल कार थी उसको लेने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कार के लिए लोन के लिए अप्लाई किया, फिएट कार के लिए। इनको 5,000 रुपये का लोन मिला और उस लोन को ये चुकाते रहे। और लोग बोलते हैं कि जब इनकी मृत्यु हो गई तब तक उसके बाद भी इनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी उससे इसका लोन चुकता किया गया। तो एक तरफ शास्त्री जी की मिसाल ऑनेस्टी के बारे में वहाँ तक है, और हम आज की बात करें तो आज देखिए वैल्यूज़ कितनी चेंज हो गई हैं हमारी, मतलब हर एक पॉलिटिकल लैंडस्केप पे और हर जगह पे। तो ये चीज़ें मित्रों हमको याद रखनी चाहिए कि हम जिस देश से आते हैं वहाँ ऐसी प्रतिभाएं हुई हैं जिन्होंने खाली अपनी इंटेग्रिटी, अपने हार्डवर्क के बल पर वो देश को कहाँ से कहाँ ले गए। तो चलिए हम याद करते हैं शास्त्री जी को और उनकी जो अमानत उन्होंने हमको पास की है, इसको सुनते हैं कुरगाना।
1: और गांधी जी को भी याद करते हैं।
0: और गांधी जी को भी याद करते हैं, बिल्कुल। दोनों लोग डिफरेंट पर्सनालिटीज थे और दोनों का ही कंट्रीब्यूशन अमेजिंग था। तो सुनते हैं कुरगाना।
1: बिल्कुल।